चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खाल।

दान बबेक दान विसाहु दान प्रुसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा पवाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान ने ओटियां दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पवन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दीवार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश समतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण सहाण गणिजय तिरभावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता तास चरण लिरदै वसाओ तो परम गुरु नानक गुण गावो फिरत फिरत प्रभ आया प्रया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सोए रही प्रभ खबर न जानी और भया बहर पछतानी प्रै प्रेम सहज मन अंध तरोरी प्रभ मिल वे की लालसा ताते आलस कहा करोरी कर्म अमृत आन निसारयो किसर गयो भूम पर डारयो साध मोहलादि अहंकारे दोष नाही प्रभ करना हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सृजन हारे रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी एहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख हो सिफत खसम दी नूर अरस हां कुरस हां तुद डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है सब नांद सजन सचा पात साहु सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗੋ ਕਿਛੁ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ

तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किस थिर न रहाई,

काट काट राव रहया बनवारी, जाल थाल महियाल गोपतो वारत, गुर शब्दी देख निहारी जियो। मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सत गुर कृपा धारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, कट पीतर देख मुरारी जियो। जन्म मरण को इहो जग बपड़ो,

हर मानवस्या निरंकारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ना गर्भ मजारी जियो। नानक ज्ञान रतन परगासे आ,

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी वड़ी हम वडाया पार तेरा मर्तबा रंग रंग अनेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा खत फला तेरे कार आनंद वधाई तुत कर मान महता ते दे अपना पजर सरब कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे।

अकाल पुरख अपने तख्त दे सदा सहारी ता काल जीओ श्री ननकाना साहिब अगे हो।

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ती को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को शाड़ कै, गहो तुहार द्वार। बाही गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को शाड़ कै, गहो तुहार द्वार। बाही गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां। शब्द तां गावहु हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यहो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गलों सुमरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। सदा सिवत सला तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियाँ यह वडियाइया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया।
ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ।

सर्व कल्याण प्रभु कीने, कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सर से होए, हर हर नाम त्याई। रहाओ जो मंग है सो ले वह, प्रभ अपने संतां दीवह। हर गोविंद प्रभ राख्या, जन नानक साच सुपाख्या। जो मंग है सो ले वह, प्रभ अपने संतां दीवह। हर गोविंद प्रभ राख्या, जन नानक साच सुपाख्या।

हम अवगुण परि एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर साह कुर साह चटिया। तुद डिठी सच्ची पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया साबना दावी साहु। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया साबना दावी साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। एथै ओथै रखवाला। प्रभ सत गुर दीन दयाला। दास अपने आप राखे काट काट शब्द सुपाखे। एथै ओथै रखवाला। प्रभ सत गुर दीन दयाला। दास अपने आप राखे काट काट शब्द सुपाखे। गुर के चरण ऊपर बल जाई। दिन सुरैन सास सास समाली। पूरन सबनी थाई। रहाओ आप सहाई होआ। सच्चे दा सच्चा टोआ।

संत जना मिल हर जस कायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोए मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाए, गुर प्रसाद।

पेर विस्मा रूप विस्मा रंग विस्मा नग फिर जंत विस्मा कौन विस्मा पानी विस्मा अग्नि खेड बडाणी विस्मा तरजी स्मात खाणी विस्मा साध लगे प्राणी विस्मा संजो विस्मा विजो विस्मा भुख विस्मा भोग।

0: जह सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखेन। जह सतगुर सिमरंत रिदा हर नाम दिनो दिन। जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै। जह सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै। सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो। जह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जमको नहीं त्रास। जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास।
1: नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंगद अंग संग पयो।

कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही ये चाहे जियो। सत साहिब श्री निवास आदि पुरख सदा।

मनस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख होवे सिफत खसमी नूर अरसा कुरसा। तुद डिठे सच्चे अमल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साहो सिर सा जिस पास बैठे आ सोही सबना सजन सच्चा पात साहो सिर सा जिस पास बैठे आ सोही है सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला चौथा, घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, बनजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहो। आपे वणज बापारिया प्यारा, आपे सच वेसाहो। आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाहो।

सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान सिर अमृत सार साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल कर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकण साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणे आंदे मान नेताणे आंदे तान ने ओटे आंदी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी आओ सरबत साध संगत नूं अपने दरां करां सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ।